आप कभी झरनों के पास से गुजरे हैं दोस्तों? झरनों में जब आप उनके पास से गुजरेंगे तो एक ऐसी आवाज आती है जो किसी ब्यूटीफुल म्यूजिक से कम नहीं होती है। आप ठहर जाते हैं, थोड़ी देर उन झरनों में पैर डालकर बैठ जाते हैं और शांति से उस म्यूजिक को एंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि उन झरनों में पत्थर हैं और जब वो पानी पत्थरों से टकराता है तब निकलती है वो सुरीली सी आवाज। अगर झरनों में पत्थर ही नहीं होते तो आवाज आती ही नहीं, क्योंकि पानी बहुत ही फ्लेंटली बहता है ना, वो रुकता नहीं, ठहरता नहीं, पत्थरों से टकराता नहीं। हमारी आपकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर लाइफ में मुश्किलें नहीं आएंगी तो हम कितने खूबसूरत हैं या हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है ये हमें कभी पता नहीं चलेगा। लाइफ बस स्मूथली बहती रहेगी, उस लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और इसलिए लाइफ की प्रॉब्लम्स भी जरूरी हैं, अपनी कैपेबिलिटीज का हमें पता चलता है। आइए इस ट्रैक को सुनिए सताक्षी के साथ इस बात पर, और सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

It happens in Rap Sadakshi ke saath, Reju Braswani, 1701 AM par. Aur it happens ka ye saath, hume jab ek dusre ke saath morning mein connect karta hai, hum aur aap saath hote hain, to ek baat to zarur samajh aati hai ki zindagi jo hai wo kuch log agar saath ikhatte ho jaye to kitni khoobsurat ho sakti hai. है ना, मतलब हर एक पल लाइफ का कितना हसीन और कितना बेहतरीन बन सकता है. मगर हम कुछ उस मुकाम पर आ गए हैं जहां हमें लगता है कि हम अकेले ही ये पूरी दुनिया जीत लेंगे, जहां हमें लगता है कि अकेले ही हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं. हम दूसरों के साथ रहना नहीं चाहते, हम एक दूसरे की खुशी से जलने लगे, हमें जलन होने लगी, हम जलस फील करने लगे. बट देखा जाए तो जब सब साथ होते हैं तभी उन खुशियों का मजा आता है, है ना. और चलिए उन्हीं खुशियों के नाम फिलहाल ये अगला ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर, और खुशियां बटोरते रहिए.

वेलकम बैक रेडियो प्रस्वानी 1701 AM. आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ इस वक्त इट हैपेंस, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो. ठीक है, हम जिस भी रिलेशनशिप में हैं, फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी रिश्ता हो जिसमें आप बंधे हैं या जिससे आप जुड़े हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन है या वो रिश्ता जो इस दुनिया में आने के बाद आपने बनाया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, आपके सिबलिंग्स, किसी के साथ भी वो रिश्ता जब खराब होता है या जब उसमें दरार आती है या जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो अक्सर ये सोचते हैं कि यार छोड़ो हम ना, खासकर ब्लड रिलेशन अगर नहीं है तो हमारे दिमाग में ये बहुत जल्दी आता है कि यार शायद ये रिश्ता मेरे लिए ठीक नहीं, और हम दूसरे रिश्ते की तरफ खुद को डाइवर्ट करने की, खुद को मोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना. लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप अगर एक रिश्ते में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या दूरियां आ रही हैं तो आप रिश्ता बदलने की सोचें. आपको उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा क्योंकि आप बहुत ही पैशनेटली उस रिश्ते में हैं, आपने बहुत उस रिश्ते को दिया है. तो दो लोग जब बैठकर बात करते हैं ना किसी भी मुद्दे पर, तो वो बातें आसान हो जाती हैं और रिश्ता भी खूबसूरत हो जाता है, राइट. तो ध्यान रखिए इस बात का. आइए आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ. सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर.

0: नमस्ते।
1: बात करते हैं अभी उन लोगों की जिनके एक कॉल से लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। आप कितना भी स्ट्रेस में हो, आप कितना भी स्ट्रेस भरा माहौल फील कर रहे हो, आप को लग रहा हो कि लाइफ में अभी कुछ बढ़िया नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उनका कॉल आते ही आपके माइंड में सब कुछ रिसेट हो जाता है और फिर ये फीलिंग होती है कि यार हाँ अभी बेटर फील हो रहा है, अभी अच्छा फील हो रहा है, राइट। सो यस, ऐसे लोग हो सकता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और वो आपकी लाइफ में बहुत दूर तक आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दिल का एक ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जिस हिस्से से दूर रहना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और हम सबके आसपास कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे माइंड की लाइट को ऑन कर देते हैं, जो हमें एक नए जोन में ले जाते हैं और हमें बेटर फील कराते हैं, राइट। सो यस, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है तो खास उसके नाम ये ट्रैक प्ले कर रही हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर।

इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सुदाक्षी के साथ इट हैपेंस में हम और आप कुछ जिंदगी के फलसफों को आज एक बार फिर से बांट रहे हैं, लेकिन अभी बात आपके जिंदगी के फलसफों की नहीं करेंगे, बात करेंगे आपकी बॉडी की। हाँ, ये शरीर जो है ये वो मशीन है जिसे अगर ठीक से चीजें ना मिलें, अब देखिए मशीन में क्या होता है, हमें वो चीजें डालने की जरूरत पड़ती है जो उसको स्मूथली चला सके। ठीक हमारी बॉडी के साथ भी ऐसा ही, हमारे माइंड के साथ भी ऐसा ही है। अगर इसे स्मूथली चलाना है तो इसे थोड़ी सी अच्छी एनर्जीज देना बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, लोगों के बारे में सोचना, सिर्फ काम के पीछे, सपनों के पीछे भागते रहना, ये अक्सर आपकी हेल्थ और आपके माइंड दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए जरूर कुछ टाइम निकालिए अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देने के लिए। एक और ट्रैक सुदाक्षी के साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

दोस्तों, ये एट हैपेंस पर सताक्षी का आज एक और बेहतरीन साथ था आपके साथ, और आई होप कि ये वक्त आपके लिए, हमारे लिए, हम दोनों के लिए बड़ा ही खास रहा। आपके मॉर्निंग्स बेहतरीन होती रहें और आप लाइफ को यूं ही एंजॉय करते रहें। इसी विश के साथ लेते हैं आज के सफर से इजाजत। चलिए, कल जरूर होगी आपसे मुलाकात। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रह्मवाणी 101 एफएम ते जी आपचे संदेश ओलक दिनाल सेम बने हुए हो। देखो गल अज 90 दे दहाके दी करते हैं, तां 90 दे दहाके विच ना बॉलीवुड विच एक्शन दा एक नवा ही दौर चल रहा सी। सुनील शेट्टी इस दौर दे सब तो वड्डे हीरो बन के उभरे सी। उन्होंने अपनी पहले ही फिल्म विच साबित कर दिता सी कि वो इंडस्ट्री ते राज करन दे लई बने हुए ने। सुनील शेट्टी दी फिल्मां दा क्रेज इन्ना सी कि सिंगल स्क्रीन थिएटर दे बाहर लंबियां लाइनां कदे खत्म ही नहीं हुंदियां सी। कहा जांदा है कि उन्हां दीआं कुछ फिल्मां अजिहीआं हैगीआं ने जिन्हां दे विच जिन्हां ने उन्हां नूं ना सुपरस्टार बना दिता, ते जिन्हां दे विच दो तां अजिहीआं हैगीआं ने जो बॉक्स ऑफिस जबरदस्त सफलता हासिल करने विच कामयाब रहीआं सी। ते पैसे गिणन दा वी समां नहीं बचिआ सीगा उहनां दे कोल। हुण तुसीं सोचिए होंगे कि फिल्मां दी गल कर ली है पर फिल्मां दसदीआं या नहीं। दसदीआं सब बारे दसूंगी पर पहलां सुन लो तुसीं गीत।

बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवान एवं सरोवान एम ते जी आरचे संदेश ओलक दिन से बने हुए हूँ। गल करते हैं सब तो पहला केड़ी फिल्म का नाम आता है सुनील शेट्टी की। जदों जदों सुनील शेट्टी का जिक्र होगा ना उदो 90s की एक फिल्म का जरूर नाम आऊगा। जी जी जी, 90s की मोस्ट पॉपुलर फिल्मों की गल आती हैगी है तो नाम मोहरा का ही होंगे ना। सुनील शेट्टी की है। सुनील शेट्टी ने विशाल का रोल किया जो इंसाफ पाउण के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह फिल्म 1994 की दूसरी सब तो वड्डी हिट सी। इसकी कमाई ने ट्रेड पंडिता भी हैरान कर दिया। फिल्म के गाने से सुनील अक्षय की जोड़ी ने अजिहा जादू किया कि मेकर्स के लिए पैसे छापण वाली मशीन साबित हुई सी।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331711 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331711। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डीजीसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: उमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां थोड़ा प्रणत भजित। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी थोड़े कोल आ रहे हैं।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्चे निविया के साथ। माफी चाहते हैं थोड़ी सी देरी हो गई है, लेकिन पूरी तरह से इसे सफल किया जाएगा, मतलब पूरी तरह से इसकी भरपाई की जाएगी, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है इवनिंग वाइब और वाइब अब इवनिंग की कुछ खास बनने वाली है, ये गारंटी हम आपको देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सो इवनिंग वाइब आ गया है, आपकी आर्चे निविया भी आ गई है, तो अब आप भी जल्दी से आ जाइए और सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं एक ऐसा रिचुअल प्रैक्टिस जो कि लिटरली हमें अच्छा फील कराता है, हेल्दी फील करवाता है मेंटली फिजिकली एंड हमें शांत फील करवाता है। मतलब ये जो कितना केओस है इस दुनिया में, मतलब दुनिया बहुत खूबसूरत है पर दुनिया में केओस की कमी नहीं है, ऑल थैंक्स टू ह्यूमंस। बट अगर आप ये चीज करते हो ना, अगर आप डीप ब्रेथ एक्सरसाइज यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, थोड़ी सी भी कर लोगे तो आपको अच्छा फील होगा और ये केओस जो है वो आपके अंदर नहीं पहुंच पाएगा। एंड व्हेन आई से अंदर, आपके मन में, आपके दिमाग में। जी हाँ, तो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते अब जरा यहाँ पर एक बढ़िया सा गाना आपके लिए प्ले करने वाले हैं हम, और इसका नाम ही है फर्स्ट क्लास। तो मुझे तो पता है कि आप सब एकदम फर्स्ट क्लास हो और हमारा गाना भी एकदम फर्स्ट क्लास है, इसकी भी गारंटी हम आपको देते हैं।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है, तो जरा आप चलें सीधा मौसम की तरफ, क्योंकि शुरुआत के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि भाई हम प्लानिंग तो कर लेंगे, हम अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सोच भी लेंगे, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, लेकिन मौसम कितना साथ देने वाला है। ऑफकोर्स अगर आपकी कोई आउटडोर एक्टिविटी, अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कुछ काम करना है या वैसे ही फन के लिए जाना है, तो उसमें मौसम कितना साथ देने वाला है और क्या मौसम बाहर निकलने वाला है भी या नहीं, वही सब हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर बात की जाए अभी की तो 22.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है और आपको फील हो रहा है 20.7 डिग्री सेल्सियस के करीब। वेल, चांसेस ऑफ बारिश तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन मैंने आपको कहा था कि थोड़ी क्लाउडी सिचुएशन रह सकती है और उसकी वजह से ठंडक रह सकती है, वो है। और इसी के साथ यहां पर एयर क्वालिटी है एकदम मजेदार, यानी कि एकदम फेयर। वहीं रात के टेम्परेचर की बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस यानी कि 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आप तापमान में देख पाएंगे। इसी के साथ अब जरा बात करते हैं फ्राइडे और सैटरडे की, क्योंकि आज की बात हो गई है फ्राइडे और सैटरडे को मौसम कैसा रहने वाला है, खासकर सैटरडे वीकेंड का दिन है तो छुट्टी होगी और तब कैसा होने वाला है, आइए जरा वो भी बताते हैं आपको। सबसे पहले फ्राइडे 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ नो चांसेस ऑफ बारिश, 10% मुझे चांसेस दिख रहे हैं बारिश के, पर वो भी ना के बराबर है, और पूरी तरह से सूरज खिलखिलाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और सैटरडे को भी 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ आपको सूरज जो है वो खिलखिलाता हुआ नजर आएगा, मतलब कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, और आराम से बाहर निकलने का मौसम आपको मिलने वाला है। सो ये है मौसम का हाल, जो कि चल रहा है अपनी ही चाल, क्योंकि ये नहीं चलता हमारे नाल। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि वैशर्मा ब्रेक ब्रेक लगा दो, यहीं पर ही ब्रेक लगा दो, तुमने फिर से शायरी करनी शुरू कर दी है, टूटी फूटी फटीचर शायरी अपने पास ही रखो, ठीक है यार, ठीक है ठीक है। आप लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं है, शायरी पसंद नहीं है, किसी दिन कहोगे नीवे शर्मा तुम सांस भी क्यों लेती हो, सांस भी मत लेना। आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा क्या खाया तुमने इतनी ड्रामेटिक प्रोग्राम की स्टार्टिंग में, अरे थोड़ा ड्रामा तो कर ही लेना चाहिए, राइट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

चीज तो पक्की है कि इमरान हाशमी अगर किसी भी मूवी में आते हैं तो उनकी मूवी के गाने बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको इमरान हाशमी की मूवी देखने की जरूरत नहीं है, अगर इमरान हाशमी की कोई मूवी आ रही है तो गाने बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा, एक ऐसी चीज एक और जो है वो इंसान के साथ होती है और वो है मोहित सूरी। सो मोहित सूरी जब भी पिक्चर बनाते हैं उनकी मूवी के गाने बहुत अच्छे होते हैं, चाहे आप कोई भी देख लो। मतलब आप एक विलन देख लो, जी हाँ, गलियां गलियां तेरी गलियां, गा नहीं रही हूँ, डोंट वरी। उसके अलावा उन्होंने बनाई है मूवी सैयारा, जो कि पिछले साल की सबसे ज्यादा हिट होने वाली मूवीज में से एक थी, और इट वॉज लाइक यू नो ड्रामा, फुल ऑन ड्रामा मूवी एंड अ रोमांटिक मूवी। जी हाँ, रोमांटिक बट अ फुल ऑन ड्रामा मूवी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, क्यों है ये, ऐसा क्यों किया भगवान ने, मतलब ऑफकोर्स मूवी के वाले सिचुएशन में, बट देन आपको गाने इतने अच्छे सर्व किए गए कि क्या ही बात है। सो इमरान हाशमी और मोहित सूरी दोनों ही जब आते हैं अपने साथ अच्छे गाने लेकर आते हैं और उसमें कोई भी दोराय नहीं है। आप मुझे बताइए आपको इमरान हाशमी का कौन सा गाना पसंद है, क्योंकि मैं नहीं मान सकती कि आपको इमरान हाशमी का कोई भी गाना पसंद ना हो। एंड आई रियली रियली वांट टू नो कि इमरान हाशमी का कौन सा गाना है जो आपको पसंद हो, बिकॉज मेरी लिस्ट में तो बहुत सारे गाने हैं, आई कांट इवन चूज, इतने जबरदस्त गाने होते हैं इमरान हाशमी की मूवीज के। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कल ही मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ी चीज जो है वो होने वाली है स्पेस में। और स्पेस में एग्जैक्टली हम बात करें तो हमारी सैटेलाइट यानी कि अर्थ की सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है, मून की। जी हाँ, चांद हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, राइट। सो मून पर क्रैश हुआ है पिछले कल, जी हाँ। और ये जो क्रैश हुआ है ये कोई नेचुरल क्रैश नहीं था, जी हाँ, कोई एस्टेरॉयड आके नहीं टकराया था, बल्कि ये क्रैश हुआ बिकॉज ऑफ पिछले साल जो दो मून लैंडर्स के लिए फाल्कन 9 जो रॉकेट जो है वो भेजा गया था स्पेसएक्स की तरफ से, वो दोनों ही मून लैंडर्स जो हैं वो वहां पर छोड़ दिए गए थे, वो पहुंच चुके थे मून पे। लेकिन उसके बाद जो है उसकी अपर स्टेज जो थी फाल्कन 9 रॉकेट की, उसकी अपर स्टेज का फ्यूल जो है वो खत्म हो गया था और वो अर्थ और मून के ऑर्बिट के बीच में ही जो है वो घूम रहा था। और अब ऐसे में वो चांद के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गया था और कल ही वो टकराया है। जी हाँ, ये क्रैश जो है वो हुआ है, उसकी अभी तक ऑफिशियल वीडियो जो है वो किसी ने शेयर नहीं की है एग्जैक्टली, बट द थिंग इज कि इसकी वीडियो हमें जल्द ही मिल सकती है। मैंने आपको कल ही बताया था कि कैसे इससे 30 से 40 मीटर वाइड जो है वो क्रेटर बन सकता है, इसका जो डस्ट इम्पैक्ट होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। और बहुत सारी AI वीडियो सोशल मीडिया पर जो है वो घूम रही थी, लेकिन वो कोई भी ऑफिशियल वीडियो नहीं थी, मतलब वो लोगों ने AI से बनाई थी, सो ऑफ कोर्स आपको उसे ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन एग्जैक्टली आपको इसकी ऑफिशियल वीडियोस का इंतजार करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि ये नजारा जो है वो आज दिन तक ह्यूमैनिटी ने नहीं देखा था, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ऑल्दो इसके अलावा एक ऐसा एस्टेरॉयड भी आ रहा है चांद के पास जो कि चांद से टकराने वाला है और वो काफी बड़ा होगा, जी हाँ बहुत बड़ा होगा। और ऐसे में चांद फिर उसके बाद किस हालात में रहेगा वो अभी भी क्वेश्चनेबल चीज है, बट उसमें अभी वक्त है। लेकिन फिलहाल के लिए मैन मेड फाल्कन 9 रॉकेट की अपर स्टेज जो है वो मून से टकराई है और उसका ऑफिशियल वीडियो जो है वो आपको उसका इंतजार रहना चाहिए, क्योंकि सच में वो जबरदस्त नजारा हो सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि चांद को अफेक्ट होगा तो वो अच्छा इफेक्ट होगा या बुरा इफेक्ट होगा, मैं आपको बताऊं तो ये पहली बार नहीं है कि चांद से कोई चीज जो है वो टकरवाई गई है। जी हाँ, ऑफकोर्स यहां पर फाल्कन 9 जो है, जो अपर स्टेज थी फाल्कन 9 रॉकेट की, वो जानबूझ के नहीं टकरवाई गई, मतलब उसको जानबूझ के क्रैश नहीं करवाया गया मून से, लेकिन इससे पहले भी ऐसी कोशिशें जो है वो की जा चुकी हैं ताकि देखा जा सके कि मून पर इम्पैक्ट कैसा होता है। जी हाँ, और वो नासा ने पहले भी किया है, लेकिन वो इतने बड़े लेवल का नहीं था। जी हाँ, और इसीलिए ये नजारा जो है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
1: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare and transport. When you take part, you help make sure your language, culture and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Mera naam Dr. Kumar hai aur yahan kuch aisa hai jise janna acha hai. Ek naya National Lung Cancer Screening Program shuru hua hai. Ye saral hai, nishulk hai aur ye lakshanon ke samne aane se pehle hi lung cancer ka pata laga sakta hai. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर्चे निव्या के साथ। दोस्तों, तो अभी थोड़ी देर पहले की बात है, मेरे बहुत ही क्यूट लिसनर हैं, उनकी तरफ से मुझे एक वीडियो आती है, क्योंकि वो हमेशा अपने प्यारे प्यारे जो पल होते हैं अपनी जिंदगी के, जब भी वो मजे कर रहे होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग मुझे भेजते हो, मुझे बहुत मजा आता है। तो उन्होंने वैसे ही मजे करते हुए एक प्यारी सी ड्राइव की वीडियो हमें भेजी और उस वीडियो में वो एक गाने को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट, वेल आपको पता चल जाएगा। तो गाना कुछ ऐसा है कि हुई महंगी बहुत शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। अब मैं तो हमेशा कहती हूँ कि शराब जो है वो बुरी है, अच्छी नहीं है। सो फिर वो थोड़ी हो या ज्यादा हो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो उसको बिल्कुल भी ना पियो, थोड़ी भी ना पियो। बट द थिंग इज कि यहाँ पर गाने को जो है वो ऐसे बनाया गया है कि हुई महंगी बहुत शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। पर वहीं मेरे बहुत ही खास लिसनर उसी वीडियो में वो कहते हैं इस गाने के लिरिक्स को चेंज कर और वो बहुत ही दिलचस्प चीज है, एंड दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। वो कहते हैं कि हुई महंगी बहुत पेट्रोल, क्योंकि वो गाड़ी चला रहे हैं और उसी के साथ वो गा रहे हैं हुई महंगी बहुत पेट्रोल, थोड़ी थोड़ी भरा करो। एंड आई वाज लाइक वाह। इसीलिए कहती हूँ मेरे लिसनर्स जो है वो बहुत ही गजब के हैं, मतलब उनसे ज्यादा क्रिएटिव इस दुनिया में कोई नहीं है। जो लोग आर्टिस्ट है ना वो भी नहीं होंगे इतने क्रिएटिव। पर मैं यह कहूंगी कि डेफिनेटली क्रिश जी, आपकी बात तो एकदम सही है कि हुई महंगी बहुत पेट्रोल, थोड़ी थोड़ी भरा करो। मतलब शराब तो महंगी हुई या नहीं, वो थोड़ी नहीं, ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन पेट्रोल जो महंगा हो गया है उसे भी थोड़ा थोड़ा भरना पड़ेगा, क्योंकि सच में वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया। अब आप लोगों को पिछले कल एक न्यूज सुनने को मिली होगी कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो खुल गया है। मुझे भी यही सुनने को मिला, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और एकदम से एक इन्फ्लुएंसर सामने से आता है और वो कहता है आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया है। जी हाँ, एंड आई वॉज लाइक ओह दैट्स सो गुड। और मैं अभी सोच ही रही थी कि आगे से वो बोलता है अरे ये आपको लग रहा है, ये विश्वास आपको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप, पर ऐसा हुआ नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुला नहीं है। जी हाँ मैंने कहा तो बिल्डअप तो बहुत ही अच्छा किया कि वाह आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुल गया है, अब तेल होगा सस्ता, ऐसा यकीन आपको डोनाल्ड ट्रंप दिलवा रहे, लेकिन ऐसा है नहीं। सो बात तो सही है क्रिश जी आपकी कि हुई महंगी बहुत पेट्रोल, थोड़ी थोड़ी भरा करो और शराब से तो बिल्कुल दूर रहा करो। सो या थैंक यू सो मच। और क्रिश जी, विनी जी, आपके लिए यही गाना जो आप एंजॉय कर रहे थे और थोड़ा और मजे के साथ

जी हाँ दोस्तों, अब ये गाना है बहुत खूबसूरत, मतलब फनी है, बट पंकज उदास जी की गायकी जो है वो बहुत ही जबरदस्त है और गाने में दम भी है भाई, बहुत दम है। लेकिन आपको बताया, अगर आप इस गाने को सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे प्ले करोगे तो आपको कमेंट्स भी मिलेंगे, तो कमेंट्स जो है वो बहुत ही फनी है इस गाने के। किसी ने लिखा हुआ था कि घर जब आप पी के घर जाते हो तो बीवी भी आपको यही गाना सुनाती है कि भाई महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। सो जब भी पी के घर जाओ बीवी भी यही गाना सुनाती है, ये कहना है लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो कही हैं, बट मैं इतना कहूंगी कि पंकज उदास जी की गायकी जो है वो बिल्कुल भी उदास नहीं है, मतलब क्या क्या गायकी है, राइट। और इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना प्ले करने का वक्त हो गया है। गेस व्हाट, ये भी एक फरमाइशी गीत है। ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही खास लिसनर पूजा जी की तरफ से। गाने का नाम है साथिया तूने क्या किया। जी हाँ, और ये खूबसूरत सा गाना सलमान खान और रेवती की मूवी का है। आप गेस कर सकते हो कौन सी मूवी की बात हो रही है। कीजिए, अरे थोड़ा तो कीजिए। जी हाँ, चलिए इसी के साथ पहले आप गाना सुनिए, तब तक आप गेस भी करते रहिए। गाना बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच पूजा जी, हमेशा की तरह प्यारी प्यारी फरमाइशें करने के लिए। मतलब आप लोग फरमाइशें करते हो और चार चांद हमारे प्रोग्राम में लग जाते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपका योगदान जो है वो सर्वोपरि है। आप लोग बोलोगे कि निविया शर्मा ये क्या चल रहा है, तुमने फिर से संस्कृत खा लिया है क्या सुबह ब्रेकफास्ट में? ना ना ना ना ना ना, पर कभी कभी ये जो शब्द मुँह से निकल कर आते हैं ना, क्या वजन डाल देते हैं सेंटेंस में। जी हाँ, इसी के साथ थैंक यू सो मच पूजा जी, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना साथिया तूने क्या

जी दोस्तों, और इसी के साथ एक और बहुत ही बड़ी चीज हुई है। और अगर आप लोग WWE के फैन हो या आप रेसलिंग के फैन हो, तो आपने ब्रॉक लेसनर का नाम तो सुना ही होगा। ब्रॉक लेसनर जो कि लिटरली लेजेंडरी है, मतलब वो जितने लेजेंडरी हैं उतना तो शायद कोई भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स गोल्डबर्ग जो है इज एन एक्सेप्शन, बट अपार्ट फ्रॉम ब्रॉक लेसनर एंड गोल्डबर्ग कोई भी उस लीग में नहीं आता है। मतलब ये वो इंसान है जिन्होंने अंडरटेकर की वो जो रेसलमेनिया की जो स्ट्रीक थी, विनिंग स्ट्रीक थी, उसको तोड़ दिया था। जी हाँ, क्यों बात कर रही हूं मैं ब्रॉक लेसनर के बारे में? Well, of course, अगर आप फैन हैं तो मैं आपको बता दूं कि अब आपको ब्रॉक लेसनर नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने फाइनली रिटायरमेंट जो है वो ले ली है प्रोफेशनल रेसलिंग से। जी हाँ, आफ्टर अ लेजेंडरी 24-year करियर, ब्रॉक लेसनर ऑफिशियली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल रेसलिंग एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स फॉलोइंग हिज इमोशनल हेल इन अ सेल मैच अगेंस्ट ओबा फैमी एट SummerSlam 2026। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कह दिया है कि अब वो अपनी आउटडोर यू नो एक्टिविटीज और इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान देंगे, और वो अब रेसलिंग को पूरी तरह से गुड बाय कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि ये रिटायरमेंट जो है इसके बाद कभी वो हमें दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी काफी सारे जो रेसलर्स हैं और स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस की है, लेकिन कुछ साल बाद उन्हें लगा कि नहीं, हमसे रिटायरमेंट जो है वो इतने अच्छे से झेली नहीं जा रही है, हमको उसी में मजा आता है जिस चीज को हम करते हुए बड़े हुए हैं और ग्रो किया है हमने। सो सेरेना विलियम्स उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, एंड यू नो दैट वेरी वेल, राइट? सो ऐसा ही जो है वो हमें देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर के मामले में या नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने रिटायरमेंट कर दी है अनाउंस। एंड आई डोंट नो इफ यू आर फीलिंग इमोशनल और नॉट, बट आई एम फीलिंग इमोशनल बिकॉज आई हैव बीन अ फैन ऑफ WWE, आई हैव बीन अ फैन ऑफ UFC हैवीवेट फाइट्स, एंड यू नो व्हाट, मुझे हमेशा से इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। सो ऑफकोर्स मैं जानती हूं कि ये कितना इंटरेस्टिंग लगता है जितने भी मेल्स होते हैं उनको। सो या, ब्रॉक लेसनर ने फाइनली रिटायरमेंट जो है वो घोषित कर दी है। मैं आपको बता दूं कि ब्रॉक लेसनर के पास जो है वो कम खिताब नहीं है, ही इज एंड ही वॉज अ 10-time WWE वर्ल्ड चैंपियन, UFC हैवीवेट चैंपियन, NCAA डिविजन नेशनल चैंपियन, और ये वही इंसान है जैसे मैंने कहा जिन्होंने शैटर किया था अंडरटेकर का रेसलमेनिया का स्ट्रीक। सो या, ब्रॉक लेसनर You'll be missed. मतलब of course he is alive and he is just retiring. But the thing is कि Brock Lesnar और wrestling को हम हमेशा से एक साथ देखते थे, अब हम imagine नहीं कर पाएंगे कि wrestling की दुनिया से Brock Lesnar ने हमेशा के लिए goodbye जो है यहाँ पर कह दिया है। Well, we don't know वापसी वो करेंगे या नहीं, वापसी करेंगे या नहीं, लेकिन अभी के लिए तो उन्होंने retirement घोषित कर दी है। So yeah, हमें कहना पड़ेगा यू आर अ लेजेंड ब्रॉक लेसनर एंड देर इज नो वन जो कि आपके जैसा हो सकता है। सो यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए, और ये खूबसूरत सा गाना है अगेन एक फरमाइशी गीत। मैंने कहा ना, हमारे पास यहाँ फरमाइशों की बहार आ गई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लेसनर अमला जी की तरफ से। गाना उन्होंने ताजमहल मूवी का किया है फरमाइश, गाने का नाम है जो बात तुझमें है। भाई बात तो सही है, मोहब्बत होती है ना, तो जो सामने वाले इंसान में, उस पर्टिकुलर इंसान में जो बात दिखती है वो किसी में नहीं दिखती। सो आइए जानते हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच अमला जी, हमेशा की तरह खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए, उन गलियों में हमें लेकर जाने के लिए जिन गलियों में हम एंट्री नॉर्मली मारते हैं ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट में, बट ये गाने इतने खूबसूरत हैं और कुछ गाने तो ऐसे होते हैं जो हमने सुने भी नहीं होते। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
2: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
4: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao, ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. Apne parivar layi lodindiyan sari zaruri cheezan naal kar chhad ke jaan wali kit banao. Ag de khatre de darjiyan di jaanch karo, ate jangal di ag diyan chetavniyan nu suno. ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ
5: ਪ੍ਰਿਆ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਮਮਾ ਕਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੋ ਉਨਕੋ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੇ ਥਰੂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਮਨੀ ਭੇਜ ਦੋ ਜਿਸਸੇ ਵੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਕਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਲੇਂਗੇ
6: ਯੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਕਾ
5: ਅੱਛਾ ਵੋ ਕਿਆ
6: ਅਬ ਤੁਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਯਾ ਫਿਜੀ ਮੇ ਵੀ ਮਨੀ ਭੇਜ ਸਕਤੀ ਹੋ ਲੋਟਸ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀ ਹੈਲਪ ਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਵੋ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮੇ
5: ਲੇਕਿਨ ਮਮਾ ਕੇ ਲੀਏ ਮਨੀ ਲੈਣੇ ਕਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ
6: ਅਰੇ ਰਿਸੀਵਰਸ ਅਬ ਕੈਸ਼ ਪਿਕਅਪ बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें
7: जी हाँ दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियाचे निव्या के साथ दोस्तों कल ही की बात है मैं सोशल मीडिया चला रही थी और वहां पर मुझे एक मीम दिखता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मीम तो मेरे लिसनर्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और क्या पता ये उसे यूज भी करे जी हाँ सो मीम था ऑफकोर्स कॉरपोरेट सेक्टर के बारे में उसमें लिखा हुआ था मैनेजर बोलता है जो एम्प्लॉय को योर परफॉर्मेंस इज डिक्लाइनिंग जी हाँ ध्यान से सुनिएगा मैनेजर बोलता है अपने एम्प्लॉय को योर परफॉर्मेंस इज डिक्लाइनिंग तो सामने से एम्प्लॉय बोलता है ओके लेट मी नो व्हेन इट रीचेस योर लेवल जी हाँ यू नो व्हाट द फनी थिंग इज कि सच में अगर जो एम्प्लॉय है वो सच में मैनेजर को ऐसे जवाब दे दे क्या होगा क्या होगा मतलब क्या होगा कहीं वोल्केनो इरप्ट हो जाएगा कहीं सुनामी आ जाएगी क्या होगा कुछ नहीं होगा लेकिन मैनेजर को एक झटका जरूर लग जाएगा कि ओह माय गॉड मतलब हम सामने वालों से इतना काम करने की उम्मीद रखते हैं लेकिन सामने वाला हमारी काम चोरी जो है उस पर निगरानी बनाए रखे है तो हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए और हमें सामने वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए लेकिन मैनेजर्स जो हैं और टीम लीड्स जो हैं वो ऐसा करते हैं अब आप खुद ही मैनेजर हो तो प्लीज मेरे पर हमला मत बोलिएगा कि निव्या शर्मा तुम्हें कैसा पता सारे मैनेजर्स एक जैसे होते हैं वेल आई एम गोना से कि नॉट एवरी मैनेजर इज लाइक दैट और नॉट एवरी टीम लीड और बॉस इज लाइक दैट बट मोस्ट ऑफ देम आर एंड लेट्स बी रियल दे आर लाइक दैट सो एम्प्लॉयज जो है जो ये सारी की सारी खुराफात अपने दिमाग में बनाते हैं कि अगर हमारा मैनेजर हमें ये बोलेगा तो हम ऐसे कम बैक करेंगे पर आधे से ज्यादा चीजें तो वो बोल भी नहीं पाते बिकॉज भाई रोकड़ा है भाई पैसे का मामला है भाई नौकरी का मामला है सो ऑफकोर्स लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि सच में अगर ऐसा कोई करना शुरू कर दे तो क्या होगा वेल यू नो वॉट देयर इज अ जनरेशन जो ऐसा करती है कैन यू गेस जेंजीज वो सच में ऐसी बातें कर देते हैं मतलब आप उनको कुछ बोलोगे और आपको लगेगा कि जैसे हम मिलेनियल्स और जैसे हम पहले वालों को परेशान करते आए हैं और वो सामने से चुपचाप बिल्कुल चुपचाप सर नीचे रख के काम करते आए हैं जेंजीज ऐसा नहीं करते आप जेंजीज से पंगा लेके देखो जेंजीज आपको बताएंगे ओह Are you kidding me? Yeah, that's what they're gonna say. So, अगर आपका मैनेजर आपको बोले your performance is declining, तो आप सामने से कहते हो, okay, let me know when it reaches your level. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन बहुत ही खूबसूरत है.

Jay.

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। और खबरों में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की एक खबर से। जी हाँ, जहां पर मेटा ने पीएम मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाने पर माफी मांगी, तो बीजेपी ने भी कुछ कहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने वो जो प्रोटेस्ट चल रहा था नीट पेपर लीक के मामले में, उसके लिए वीडियो डाली थी और मेटा ने उसे एकदम से हटा दिया था। ऑफकोर्स उसे बाद में रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन मेटा ने ऐसा किया, इसके लिए मेटा को माफी मांगनी पड़ी। ऑफकोर्स उन्होंने ऐसा कोई रीजन नहीं दिया, बट द थिंग इज कि उसके बाद जब उन्होंने ये काम किया, लोग उनके पीछे पड़ गए थे। अब लोग उनके पीछे पड़ गए थे क्योंकि जो मोदी है ना, प्रधानमंत्री मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। जी हाँ, and I'm not talking about that everyone loves him, but the thing is, जो उनको प्यार करते हैं, वो बहुत ही खतरनाक प्यार करते हैं। जी हाँ, मतलब ये बंदा ऐसा है कि इसकी फैन फॉलोइंग किसी बड़े हॉलीवुड एक्टर या किसी बड़े से सेलिब्रिटी से कम नहीं है। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके सोशल मीडिया पर। वो इकलौते पॉलिटिशियन है, मतलब सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले पॉलिटिशियन है। मतलब पॉलिटिकल वर्ल्ड से कोई ऐसा बंदा जिसके इतने सारे फॉलोअर्स हों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास दुनिया के हर जो है जो सबसे बड़े जो पुरस्कार होते हैं, जो मेडल होते हैं, जो सर्वोच्च सम्मान होते हैं, वो भी उनके पास है। सो ऐसे में मेटा ने पंगा ले लिया था, उनकी वीडियो जो है वो हटाकर और उसके बाद रिस्टोर कर दी, लेकिन उसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। अब उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी जो कि जिसकी सरकार है, उन्होंने भी कुछ कहा है, ये जरा बताते हैं आपको। सो मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाने के लिए माफी मांगी है, जिसके बाद इस पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को इसे भारत के कानून और संविधान की जीत बताया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि ये भारत के कानून, संविधान और संसद की जीत है। ये 140 करोड़ लोगों के नेता प्रधानमंत्री की ताकत है। इससे साफ है कि जिसे भी भारत में कारोबार करना है, उसे देश के कानून का पालन करना होगा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम और फेसबुक से पीएम मोदी का एक वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए माफी की मांग की थी, और उसके बाद मेटा ने वो किया भी। वेल, ऑफकोर्स ये कोई और नहीं है, मतलब ऑफकोर्स इट्स नॉट डोनाल्ड ट्रंप जिनसे पंगा लिया जा सकता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को आप रोस्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बारे में ये करने की इजाजत किसी को नहीं दी है। अब ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है और खूबसूरत है।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलोंगाबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438, या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नेविया के साथ। दोस्तों, खबरों की बात हो रही है, अब जरा ईरान का रुख करते हैं। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक दावा किया है, आइए जरा जानते हैं क्या है वो। ईरान ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही के लिए एक नए रूट पर ओमान के साथ सहमति बना ली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि यह समझौता अंतिम चरण में है, हालांकि उन्होंने इसके बारे में अधिक जानकारी साझा नहीं की। बकाई ने स्पष्ट किया कि ओमान के साथ हुए इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। उनका आरोप है कि अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी और अन्य आक्रामक गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र की सुरक्षा अभी भी प्रभावित है। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी समाचार एजेंसी IRNA से कहा कि नए समुद्री मार्ग अस्थायी होगा और इसे 2 से 4 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका और ओमान की ओर से इस प्रस्ताव पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द नहीं खोला गया तो ईरान को बहुत कड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि जहाजों की आवाजाही बहाल करने को लेकर बातचीत में प्रगति हुई है और इस सप्ताह के अंत तक शिपमेंट दोबारा शुरू हो सकती है। हालांकि ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि वह अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहा है और ना ही ऐसी कोई योजना उसकी है।

जी दोस्तों, इसी के साथ कुछ दिन पहले एक बहुत ही बड़ा विवाद जो है वो मोरक्को और स्पेन की सीमा पर हुआ। ऑफ कोर्स उसके बारे में तो हर कोई बात कर रहा था, सो ऑफ कोर्स आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। क्यों हम उसके बारे में बात करने वाले हैं? सबसे पहले रीजन ये है कि स्पेन ने बहुत सारे लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों को वापस भेज दिया है मोरक्को, जिन्होंने एकदम से सूटा पर जाकर जो है वो रहने लग गए थे। उन्होंने पानी के थ्रू यानी कि समुद्र के थ्रू वो आए और उसके बाद उन्होंने एकदम से धावा बोल दिया था स्यूटा पे, जो कि अपेरेंटली सिटी है स्पेन की। जी हाँ, अब इस पर बहुत ज्यादा विवाद है क्योंकि कोई कहते हैं कि ये मोरक्को की ही जगह है, लेकिन स्पेन ने इस पर कब्जा करके रखा है। और अगर मोरक्को की ही जगह है तो मोरक्कन लोग अगर वहां पर आ गए हैं तो उसमें क्या ही बुराई है, बट स्पेन कहता है कि उसकी जगह है और स्पेन का ही हक जो है वो फिलहाल उस जगह पर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो जगह अफ्रीका की है। जी हाँ, सो अफ्रीका का पार्ट है। अब विवाद बहुत कुछ है, लेकिन एकदम से बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो हैं वो आते हैं और स्यूटा पर जो है वो धावा बोल देते हैं, वो वहां जाकर रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि अपेरेंटली स्पेन ने कुछ दिन पहले, स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक ऐसा लॉ निकाला जो कि बहुत ही गड़बड़ था। उसमें यह था लिखा हुआ कि कोई भी इमिग्रेंट अगर पानी के रास्ते यहां पर आता है तो उसको एकदम से कंट्री से नहीं निकाला जा पाएगा, उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो होगा और उस प्रोसीजर को फॉलो करने में कुछ वक्त लगेगा। एंड दैट वॉज द रीजन बहुत सारे मोरक्कन लोग एकदम से जो है वो स्पेन की सिटी स्यूटा में पहुंच गए। नाउ अब जो है वो स्पेन ने बहुत सारे लोगों को वापस भेज दिया क्योंकि इटली और फ्रांस ने स्पेन के साथ शेंगेन वीजा ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको स्पेन के साथ ये यूरोप वाली पार्टनरशिप नहीं करनी है, अगर स्पेन से कोई आएगा तो उसको अच्छे से देखा जाएगा और उसको फ्री एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी, जैसे कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज का हमेशा से चलता आ रहा है। जब स्पेन ने ये देखा तो उनको लगा कि ये तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया। स्पेन का जो लीडर है उन्होंने भी कहा कि ऐसे कैसे कर सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज, बट फ्रांस और इटली यानी कि मैक्रो और मेलोनी ने ये कहा कि भाई हमको अपनी कंट्री जो है वो सेफ रखनी है और इसीलिए हम ऐसी तादाद में इमिग्रेंट जिस कंट्री में आ रहे हैं उसके साथ शेंगेन वीजा जो है वो शेयर नहीं कर सकते। फिर क्या था, स्पेन ने उन लोगों को निकालने की कोशिश की और फाइनली उन्होंने मोस्ट ऑफ देम को निकाल दिया, मतलब ऑलमोस्ट सबको निकाल दिया गया। पर अभी भी स्यूटा में 2000 लोग जो हैं वो बचे हुए हैं, जिसमें 1000 तो बच्चे ही हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि बच्चे कैसे भाग कर आ सकते हैं, तैर के आ सकते हैं और कैसे हो सकता है, और वो कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को ऐसे भेज रहे हैं। आई मीन मोरक्को की हालत कितनी भी खराब हो, लेकिन आप अपने बच्चों को किसी और जगह पर भेज रहे हो। आई कैन नेवर अंडरस्टैंड इट। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट इमिग्रेशन, ऑफ कोर्स लीगल इमिग्रेशन इज ऑलवेज वेलकम, बट इलीगल इमिग्रेशन और दैट टू बच्चों के थ्रू, बच्चों को मतलब उस चीज का वो बनाया जा रहा है, I can never understand that. And yeah, तो वही हो रहा है यहाँ पे। स्पेन ने बाकी सब लोगों को भेज दिया, लेकिन 2000 लोग जो है वो अभी भी स्यूटा में हैं और उसमें 1000 जो है वो बच्चे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जहां पर एक स्पेनिश सोल्जर जो है वो स्यूटा से लोगों को वापस भेज रहा है और वहीं पर एक बच्चा जो है वो रो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे नहीं जाना वापस, मुझे यहीं रहना है। Now, what do you think about it? जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन इसका असर एक और चीज पर हुआ है, जी हाँ, और वो है अगला फीफा वर्ल्ड कप, क्योंकि अगला फीफा वर्ल्ड कप स्पेन, मोरक्को और पोर्चुगल साथ में मिलकर होस्ट करने वाले थे। लेकिन अब स्पेन की एक ऑपोजिशन पार्टी है, उसने कहा है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, हमको तो इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि हमें मोरक्को के साथ को होस्ट करना भी है इसे या नहीं, क्योंकि क्या पता तब भी ये इमिग्रेंट्स भेज दें हमारे यहाँ पे। जी हाँ, अब आई डोंट नो इसके मामले इस बारे में क्या कहना चाहिए, बट द थिंग इज कि मैं आप पर छोड़ रही हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, क्या ये चीज वेलकम की जानी चाहिए या नहीं, टेल मी अबाउट इट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, पूरा दिन अपने बॉसेस और अपने आजू बाजू वाले लोगों के साथ दिमाग की घिसाई करने के बाद यही वाला गाना गाने का मन करता है, क्रेजी किया रे, ओ माय गॉड क्रेजी किया रे। वेल, दुनिया क्रेजी करने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार है, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक और बात बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में जान लेना चाहिए। वेल, आपको हमेशा लगता था कि हम लोगों को अगर स्पेस में जाना है या किसी और प्लैनेट पे जाना है तो क्या हम हमेशा यहीं से खाना लेकर जाएंगे? वेल, अभी तक तो ऐसा ही था, हमें सारे के सारे राशन ग्रोसरीज इधर से ही लेकर जानी पड़ती थी। अब ऐसे में हमको मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनना है तो ये चारा तो हमेशा के लिए सफल नहीं था, मतलब सक्सेसफुल नहीं था और फिजिबल नहीं था। मतलब कितनी ही बार हम धरती पे आते, अपना खाना लेकर जाते और फिर से जो है उसको खत्म करते, फिर से आते, फिर से लेकर जाते। तो ऐसे में कुछ ऐसा हो जाए कि स्पेस में ही हम अपना खाना उगाना शुरू कर दें तो क्या बढ़िया बात हो जाएगी, राइट? पर ये तो अभी तक ड्रीम था, लेकिन इस ड्रीम को कहीं ना कहीं अचीव कर लिया है चाइना ने। जी हाँ, ऑफकोर्स नासा के बस की बात नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, नासा के बस की बात नहीं है, अब मैं सच में आपको बता रही हूँ। उनका मून मिशन भी नकली था, मैं आपको वो भी बता रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पर चाइना ने हार्वेस्ट कर लिया है फर्स्ट स्पेस ग्रोन राइस क्रॉप इन 2 जनरेशन एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आई डोंट नो कि आपको ब्रेड पसंद है, रोटी पसंद है या चावल पसंद है, लेकिन यहाँ पर चाइना वालों को चावल बहुत पसंद है, तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ और नहीं उगाएंगे, हम तो चावल ही उगा के देखेंगे पहले, और यही उन्होंने किया। जी हाँ, ये राइस सीड्स को जो है वो ले जाया गया था शेंजाउ 23 मिशन में, जो कि मई में लॉन्च किया गया था, और उसके बाद जो है वो 2 महीने इनको बहुत ही अच्छे से जो है वो इन पे रिसर्च की, इनके सैंपल्स को अच्छे से वहां पर बोया गया, सब कुछ किया गया, और फिर उसके बाद उसे ऐसा माहौल दिया गया कि वो वहां पर उग सके। एंड गेस व्हाट, चाइना ने ये करके दिखा दिया, चाइना ने चावल उगा दिया है, वो भी स्पेस में। ऑफ कोर्स स्पेस में, एग्जैक्टली स्पेस में नहीं, उनका एक स्पेस स्टेशन है जो कि स्पेस में घूम रहा है, उस ही में उन्होंने उगाया है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे उनके पास स्पेस स्टेशन भी है, ओह आपको नहीं पता, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको यूरोप, रशिया, अमेरिका यूज करते हैं, सब एक ही स्पेस स्टेशन को यूज करते हैं जो कि बहुत पुराना भी हो गया है। चाइना ने अपना अलग से, अपना इकलौता, मतलब अकेले का ही स्पेस स्टेशन बना लिया है। अब चाइना ये कर सकता है, मैं आपको बता रही हूँ, और चाइना के बाद अगर कोई कर सकता है देन दैट विल बी इंडिया आई थिंक, अदरवाइज बाकी किसी कंट्री के बस का नहीं है ये। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि चाइना का जो अपना स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियांगोंग। जी हाँ, ये नाम उन्होंने रखा है, ऑफ कोर्स चाइना का स्पेस स्टेशन है तो कुछ ऐसा ही नाम होगा, गोंग ली मी ऑफ कोर्स, है ना, तो वही वाली चीज है। उस पर ये गए थे और एक मिशन के थ्रू जो है इन राइस सीड्स को पहुंचाया गया था, अच्छे से उनको वो सारा का सारा माहौल दिया गया जिससे कि ये बढ़ सके, उग सके, जो कि अभी तक मुश्किल था, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये अचीव कर लिया है। जी हाँ, सो साइंटिस्ट जो है अब स्टडी कर रहे हैं हाउ राइस ग्रोज इन माइक्रो ग्रेविटी एंड वेदर इट कैन बी कल्टीवेटेड ओवर मल्टीपल जनरेशन इन स्पेस। सो या इट इज वॉट इट इज, लाइक आई एम क्वाइट एक्साइटेड, खाना स्पेस में लग रहा है, आई मीन स्पेस में नहीं लग रहा, स्पेस स्टेशन पर लग रहा है, बट स्टिल धरती से ऊपर कहीं लग रहा है, अपने आप में एक बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस चाइना, नो मैटर कितनी भी बुराई कर लो आपके सामान की कि चाइनीज माल है, चलेगा नहीं, बट चाइनीज माल चल गया, स्पेस स्टेशन तक चल रहा है और वहां पर राइस उग रहे हैं, बताओ जरा, हद हो गई है। चाइना को ऐसे ही बोलते रहते हैं हम लोग कि चाइनीज माल है, चलेगा नहीं, चाइनीज माल स्पेस में भी चल रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये गाना क्यों प्ले किया। मतलब मौसम बेईमान है नहीं, अरे यहाँ पर नहीं है तो दुनिया के किसी और कोने में तो है ना। चलिए वहां के लिए हमने प्ले कर दिया। और रफी साहब की गायकी सुनने का तो हमको बहाना चाहिए, मतलब हमको बहाना मिलता नहीं है और हम आगे पहुंच जाते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इसी के साथ रफी साहब जो है वो बहुत ही मजेदार जो है वो पर्सनालिटी रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा और मैंने आपको बताया भी है कि मजेदार सी बातें जो हैं इनको पसंद थी, ज्यादा बोलते नहीं थे। जी हाँ, और कोई भी गलत आदत इनको थी ही नहीं। और अगर इनको लगता था कि कोई जो है वो आर्ट की जो है वो कदर नहीं कर रहा है तो उसको जो है वो कॉल आउट कर देते थे। एक बार राज कपूर के साथ ऐसे ही हुआ। राज कपूर को बड़ी बड़ी महफिलें जो है वो लगाने की आदत थी, और राज कपूर की महफिलें जो है पार्टीज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस होती थी। जी हाँ, बड़े बड़े स्टार्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स वहां पर पहुंचा करते थे। तो रफी साहब भी एक बार वहीं पर थे, तो रफी साहब को भी उन्होंने बुला लिया। अब रफी साहब ने सोचा कि मन तो मेरा नहीं है लेकिन मैं चलो चले जाता हूं क्योंकि राज कपूर साहब है, उन्होंने बुलाया। बस फिर क्या था, वहां पर वही सब कुछ चल रहा था जो रफी साहब को इतना पसंद नहीं था, लाइक शराब और सारी की सारी मस्ती और वो सब। जो एक चीज रफी साहब को पसंद थी वो तो सिर्फ खाना खाना था। जी हाँ, तो उन्होंने अपना खाना खाया और वो मजे से वहां पर बैठे हुए थे और वो निकलने के लिए ऑलमोस्ट तैयार ही थे, बिकॉज ही वॉज लाइक ओके मेरा काम डन हो गया, अब मैं जाने वाला हूँ। तभी राज कपूर साहब उनको एक गाना गाने के लिए बोल देते हैं और रफी साहब को लगता है कि देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि देर इज नो वे मैं ऐसी पार्टी में अपना गाना जो है वो गाने वाला हूँ, क्योंकि रफी साहब अपनी मौसिकी को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। इट वॉज लाइक कि मैं अपनी आर्ट को रिस्पेक्ट देता हूँ, देर इज नो वे मैं इस पार्टी में उस गाने को गाऊंगा। राज कपूर बहुत बड़े एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रहे हैं। उस वक्त राज कपूर से पंगा लेना जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती थी, लेकिन रफी साहब ने देखा कि मतलब कुछ भी हो मैं गाना तो यहाँ पर नहीं गाऊंगा, और उन्होंने सीधा सीधा राज कपूर को मना कर दिया और वो वहां से चले गए। राज कपूर को बुरा भी लगा लेकिन उसके बाद भी वो किया ही कर लेते, क्योंकि हम रफी साहब की बात कर रहे हैं। रफी साहब को बायकॉट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। मतलब शमी कपूर से लेके, राजकुमार से लेके, देवानंद से लेके, कौन सा स्टार उनकी आवाज नहीं चाहता था। तो आप सोच ही लीजिए कि रफी साहब एकदम मजेदार इंसान थे, लेकिन मजेदार वैसे ही मजे जो कि अच्छे हो। जी हाँ, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उन्हें लगे कि ये डिसरिस्पेक्टफुल हो रही है किसी के लिए या मेरे लिए, मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा। जी हाँ, तो रफी साहब का हमने यहाँ पर जिक्र किया और यहाँ पर एक और गाना हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं। ये गाना जो है वो अगेन पुराना गाना है और ये गाना जो है वो दिलेर मेहंदी का गाना है। इस गाने की फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिसनर परमजीत जी की तरफ से। गाने का नाम है गड्डे ते ना चढ़ दी, गड्डी रे ते ना चढ़ दी, आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा ना ना ना ना तुम रहने दो, तुम गाना ही प्ले कर दो क्योंकि वही ठीक रहेगा, तुम मत गाओ। चलिए ठीक है, आप बोल ही रहे हो तो मैं नहीं प्ले करती, और आई मीन मैं प्ले करती हूँ पर मैं गाती नहीं हूँ। सो थैंक यू सो मच परमजीत जी हमेशा की तरह प्यारी प्यारी फरमाइश करने के लिए। मतलब मैं सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप ये अच्छी अच्छी फरमाइशें कर रहे हो, और अभी आप हमारे नए नए लिसनर हो और ऐसे अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो, वो सोच के और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। ये रहा आपका ये खूबसूरत सा गाना।

जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है आपका डांस करने का मन तो हो ही गया होगा और शायद आपने डांस कर भी लिया होगा। मतलब ये गाना सुन के कोई डांस को रेजिस्ट कैसे कर सकता है? मतलब मैं सीट पे बैठी हूँ, लेकिन मैं सीट पे बैठी बैठी ही हायो रब्बा हायो रब्बा ये हायो, हाँ ठीक है गाऊंगी नहीं, डोंट वरी, बता देंगे इसकी ये गाना आपको किसी भी जगह पर नचा सकता है। मतलब आप किसी कंट्री के प्रेसिडेंट के सामने बैठे होंगे और आप फिर भी डांस करना शुरू कर दोगे अगर ये गाना प्ले होगा। वेल, बहुत ही मजेदार फरमाइश, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे लिसनर्स की फरमाइशें बहुत मजेदार रहती हैं। मतलब क्या वाइब बन गई। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे एक और गाना हम आपको सुनाने वाले हैं, जो कि अगेन एक फरमाइशी गीत है और गाने का नाम है हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। जी हाँ, अब अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया अपने जिंदगी में। मतलब आपने अच्छा सिनेमा देखा ही नहीं है, मतलब आपने महमूद को नहीं देखा, जी हाँ, और हेलन को नहीं देखा इस गाने पे थिरकते हुए, तो आपने सच में बहुत कुछ मिस किया है। ये है गुमनाम मूवी का गाना। 1965 में ये मूवी आई थी और अगर आप लोगों ने महमूद का लुक इसमें देखा है तो आपको पता होगा कि एकदम मुत्तु स्वामी वाली जो है, उन्होंने मूछें रखी हुई हैं बड़ी, मतलब नाक के जो है वो नीचे एकदम छोटी सी, एकदम पूरी वाइड वाली मूछें नहीं है उनकी, एक बॉब कट जैसा हेयर कट है उनका, और जो शक्ल है उसको भी एकदम पूरा डार्क करने की कोशिश की गई हुई है। जी हाँ, मतलब बहुत ज्यादा ब्राउन करने की कोशिश जो है यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर ये सब करते हुए वो गाते हैं कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले। वेल, बात तो सही है, काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक रंग एक खूबसूरत है और जो लोग रेसिज्म करते हैं वो सबसे ज्यादा बुरे हैं। सो काला, गोरा, ब्राउन, एनी शेड ऑफ यू नो स्किन इज ब्यूटिफुल, दैट्स ऑल आई वांट टू से। अब यहाँ पर महमूद की बात हो रही है तो महमूद की बात हम जरा कर ही लेते हैं अच्छे से। जी हाँ, महमूद जो है वो इतने मजेदार एक्टर रहे हैं कि वो जो मजेदार उनकी अदाएं हैं वो सिर्फ मूवीज की ही मूवीज में ही नहीं देखने को मिलती थी, बल्कि रियल में भी वो वैसे ही थे। फिर चाहे वो जितेंद्र हो, फिर चाहे वो मुमताज हो, या इतने सारे और एक्टर्स डायरेक्टर्स हो, सब उनकी एक्टिंग के कायल थे, इनफैक्ट उनकी दिलदारी के भी कायल थे। जी हाँ, मुमताज ने तो ये कह दिया था कि अगर मेरा करियर बना है तो महमूद साहब की वजह से बना है, क्योंकि महमूद साहब ही थे जिन्होंने दिलीप साहब को मनाया था मुझे अपनी बड़ी मूवी में कास्ट करने के लिए। उससे पहले मैं बी ग्रेड मूवीज किया करती थी और मुझे कोई काम देता ही नहीं था बड़ी मूवीज में, लेकिन जब महमूद साहब ने दिलीप साहब से बात की और उन्होंने कहा कि क्या आप इस लड़की का ऑडिशन देखेंगे, क्या आप इस लड़की को मौका देंगे अपनी बड़ी पिक्चर में, तो दिलीप साहब ने मुझे दिया। लेकिन मैं जहां भी हूं वो महमूद साहब की बदौलत। जी हाँ, जितेंद्र ने ये सब कहा है कि जितेंद्र जब एक मूवी की शूटिंग कर रहे थे और उस मूवी की शूटिंग के दौरान उन्हें हंसना था एक सीन के दौरान, लेकिन उन्हें हंसी आ ही नहीं रही थी, तो ऐसे में महमूद वहां थे और महमूद ने कहा कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू बस मेरी तरफ देख लियो, मैं तुझे सामने दिख जाऊंगा, यानी कि जो एक्ट्रेस से जो बात कर रहे होंगे तुम उसके पीछे मैं दिख जाऊंगा, बस तू मुझे देख लेना। मतलब जितेंद्र जो कि टेक दे ही नहीं पा रहे थे वो हंसने का, वो अच्छे से दे पाए, महमूद ने अपनी पैंट ही उतार दी। जब जितेंद्र ने उनको देखा बिना पैंट के, वो इतनी जोर से हंसे कि तब ही वो टेक जो है वो फाइनल हो गया। जी हाँ, इमेजिन कीजिए, ही वॉज सच अ फन एक्टर टू वर्क विद बिहाइंड द सीन एंड सामने भी। जी हाँ, सच अ गुड एक्टर, लेजेंडरी एक्टर। तो आइए सुनते हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं और फिर करते हैं और भी बातें, लेकिन ये गाने की फरमाइश आई है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। जस्सी जी, थैंक यू सो मच खूबसूरत सी फरमाइश के लिए, बढ़िया सी फरमाइश के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए, और ये गाना आप सबके लिए।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? या अल्लाह, काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

0: ताले ताले झुम ताके ताले ताके झुम ताके झाला आंखों ताके झुके ताके ताले के नाके ताके नाके ताके झुम ताके नाके नाके झुम ताके नाके नाके झुम ताके नाके नाके झाम तारे ता झाग तारे ता झाने झाने को तारे ता तारे के ताले तारे ता झाग तारे ता झाने झाने को तारे ता तारे के झाम तारे झाग तारे झाग नाके नाके ता झंड ता झुम ता झंड ता झाम तारे झाग तारे झाने झाने को ता झंड ता झुम ता झंड ता ताके दंग दंग दंग तारे ताके दंग दंग ताके दंग दंग दंग
1: पाखा नारंगी की पाखा पाता चूता रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

0: हटूंगा वही, हिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आज अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। कल आपसे मिलना होगा और कल की राइड होगी खतरनाक, क्योंकि आप होगे एकदम एकदम मेहरबान। जी आप लोग बोलोगे कि मेहरबान हम क्यों होंगे, वेल कल फ्राइडे है और सारी की सारी मेहरबानी हम फ्राइडे को ही तो दिखाते हैं। मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन इतने जबरदस्त, लेकिन फ्राइडे सबसे ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये लॉजिकली है तो वीकडे, मतलब काम इसमें करना पड़ता है, लेकिन सुकून इसमें वीकेंड जैसा होता है। सब दोनों का मिक्सचर आपको मिलेगा, गाने आपको मिलेंगे, प्रोग्राम आपको मिलेगा, वाइब आपको मिलेगी, मजेदार राइड आपको मिलेगी और साथ में मिलेगा साथ निविया शर्मा का, जो कि आई डोंट नो आपको कितना चाहिए बट मुझे तो आपका साथ चाहिए। सो या दैट्स अबाउट इट। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। और ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए अगेन एक फरमाइशी गीत, जी हाँ ये भी है एक फरमाइशी गीत मेरे बहुत ही खास लिस्टर की तरफ से। सुनते हैं इसको और फिर अब आपसे मिलते हैं कल। बाय, सी यू टाटा। गाने का नाम है ये कैसा आया जमाना।
2: सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: किसी फिल्म की नहीं कहानी, ये कैसा ये कैसा आया जमाना, ये कैसा
1: उसके बेटे को
0: ये कैसा।

0: थी खड़ी।
1: पिताजी
0: ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू टेल मी व्हाट टू डू,
2: आई डोंट नो।
0: यू टेल मी व्हाट टू डू,
1: मैं क्या बोलूं जी।
0: यू टेल मी व्हाट टू डू,
2: आई डोंट नो।

0: तुम अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे। माफ करो, इंसाफ करो,
1: नहीं जी
0: मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
2: आई डोंट नो,
0: यू
1: मैं क्या बोलूं जी,
0: यू टेल मी
2: आई डोंट नो,
0: यू टेल मी
1: मैं क्या बोलूं जी।
0: ओ बाप,
2: अल्लाह
0: दादाजी मेरी बात तो सुनो
1: बेटे।
0: ओ बाप दादाजी मेरी बात तो सुनो,
1: मेरी बात तो सुनो
0: बेटे, मेरी बात तो सुनो।
1: ओ बाप
0: दादाजी मेरी बात तो सुनो।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। सनकॉर्प स्टेडियम में बैटल फॉर ब्रिस्बेन हाउसफुल। जी हां, ब्रिस्बेन के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। इस शनिवार सनकॉर्प स्टेडियम में होने वाला डॉल्फिन बनाम ब्रोंकोस का बैटल फॉर ब्रिस्बेन रग्बी मैच पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुका है। हाफ टाइम में मशहूर हुडू गुरुस बैंड लाइव परफॉर्म करेगा। वहीं ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स का काउंटडाउन शुरू। ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स और पैरालंपिक खेलों के लिए क्वीन स्ट्रीट मॉल में ओमेगा का ऑफिशियल काउंटडाउन क्लॉक लगा दिया गया है। अब से ठीक 6 साल बाद ब्रिस्बेन दुनिया के इस सबसे बड़े खेल महोत्सव की मेजबानी करेगा। वहीं इमरजेंसी सर्विसेज कैडेट गेम्स का आगाज। ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों के युवाओं के लिए रेडक्लिफ में इमरजेंसी सर्विसेज कैडेट गेम्स की शुरुआत हुई है। इसमें पुलिस, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज की 31 कैडेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। वहीं स्थानीय क्रिएटर्स के लिए स्क्रीन क्वींसलैंड का बड़ा फंड। जी हाँ, स्क्रीन क्वींसलैंड ने अपने नए ऑनलाइन एलिवेशन फंड के तहत ब्रिस्बेन के मशहूर क्रिएटर स्टूडियो आर्टस्पियर एंटरटेनमेंट समेत 5 डिजिटल बिजनेस को $2,50,000 की ग्रांट देने की घोषणा की है। वहीं पार्क्स और बीएमएक्स जंप्स के लिए काउंसिल का नया प्लान। जी हां, ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने स्थानीय सबर्ब्स में बच्चों और युवाओं के लिए बीएमएक्स जंप्स और ग्रीन रिक्रिएशन पार्क्स बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ क्षेत्रीय ऊर्जा प्रोजेक्ट से 68,000 घरों को मिलेगी बिजली। जी हां, क्वींसलैंड सरकार ने एक नए विंड फार्म प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। ब्रिस्बेन ग्रिड से जुड़ने वाला ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में राज्य के 68,000 से अधिक घरों को स्वच्छ बिजली देगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और ऑरेंज अलर्ट। जी हां, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज दिनभर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नदियां उफान पर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान के पास बह रही हैं। वहीं केरल में एक नागरिक की बहादुरी की मिसाल। केरल से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। लोकल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स ने फंसे हुए किसान को बचाने के लिए अपनी लाइफ जैकेट उसे दे दी, जिससे किसान की जान तो बच गई लेकिन उस जाबाज ने अपनी जान गंवा दी। वहीं तहलका केस में तरुण तेजपाल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ बिहार में राजनीतिक हलचल और उपचुनाव के नतीजे। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष दोनों ही इन नतीजों के बाद आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ईरान ओमान बातचीत से क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट। जी हां, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान और ओमान के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट के समुद्री रास्ते को लेकर बातचीत में सकारात्मक प्रगति हुई है। इस खबर के आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई है। वहीं रोम में इसराइल और लेबनान के बीच शांति वार्ता। इटली की राजधानी रोम में इसराइल और लेबनान के प्रतिनिधियों के बीच संघर्ष विराम को लेकर बैठकें चल रही हैं। इसी के साथ ग्लोबल मार्केट में सोने के भाव 7 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर। जी हां, दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता और कमजोर अमेरिकी डॉलर की वजह से सोने की मांग बढ़ गई है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना पिछले 7 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं वियतनाम के राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण विदेशी दौरा। जी हां, वियतनाम के शीर्ष नेतृत्व ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अपना महत्वपूर्ण राजनयिक दौरा शुरू कर दिया है। इस दौरे का मकसद एशिया पैसिफिक रीजन में व्यापार, सुरक्षा और आपसी तालमेल को मजबूत करना है। वहीं यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हीट वेव की चेतावनी। जी हां, दुनिया के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज सख्त है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला गया है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। वहीं एआई टेक्नोलॉजी में नया क्रांतिकारी बदलाव। तकनीक की दुनिया में आज एक नया रिसर्च सामने आया है, जिसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को बिना बार बार रीट्रेन किए और तेज रफ्तार से चलाने का तरीका खोज लिया गया है। इसके साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले मॉन्ट्रियल मास्टर्स टेनिस में बड़ा उलटफेर। कनाडा में खेले जा रहे मॉन्ट्रियल मास्टर्स में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। टॉप सीड अलेक्जेंडर ज्वेरेव को नीदरलैंड्स के टालोन ग्रीक्सपुर ने 3 सीटों के कड़े मुकाबले में हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में हराया। क्रिकेट के मैदान से बड़ी खबर है, पाकिस्तान की टीम ने पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। इसके बाद ही पाकिस्तान ने विदेश में लगातार 8 टेस्ट हारने के अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। वहीं दिल्ली प्रीमियर लीग में सार्थक रंजन का तूफान। जी हां, डीपीएल 2026 में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के कप्तान सार्थक रंजन ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 50 गेंदों में 95 रन बनाए और अपनी टीम को ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ एक आसान जीत दिलाई। वहीं चेल्सी एफसी का एशिया प्री सीजन टूर। इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने अपने 2026 एशिया प्री सीजन टूर के लिए नई पार्टनरशिप का ऐलान किया है। चेल्सी की टीम हांगकांग और मलेशिया में हाई प्रोफाइल मैच खेलने मैदान में उतरेगी। वहीं 19 साल के जोआओ फोनसेका ने रचा इतिहास। ब्राजील के 19 वर्षीय टेनिस स्टार जोआओ फोनसेका ने मॉन्ट्रियल मास्टर्स में ग्रीस के स्टेफानोस त्सित्सिपास को हराकर सबसे हैरान कर दिया है। इसके साथ अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स में अमनत कंबोज भी फाइनल में पहुंचे हैं। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल यानी कि फ्राइडे को। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

पर सोकर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी. जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: दीवाना।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर चे संदेश ओलग दिनाल सीम बने हुए हो। देखो गल अज 90 दे दहाके दी करते हैं तो 90 दे दहाके विच ना बॉलीवुड विच एक्शन दा एक नवा ही दौर चल रहा सी। सुनील शेट्टी इस दौर दे सब तो वड्डे हीरो बन के उभरे सी। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म विच साबित कर दिता सी कि वो इंडस्ट्री ते राज करन दे लई बने हुए ने। सुनील शेट्टी दी फिल्मां दा क्रेज इन्ना सी कि सिंगल स्क्रीन थिएटर दे बाहर लंबियां लाइनां कदे खत्म ही नहीं हुंदियां सी। कहा जांदा है कि उन्हां दीआं कुछ फिल्मां अजिहीआं हैगीआं ने जिन्हां दे विच जिन्हां ने उन्हां नूं ना सुपरस्टार बना दिता ते जिन्हां दे विच दो तां अजिहीआं हैगीआं ने जो बॉक्स ऑफिस जबरदस्त सफलता हासिल करने विच कामयाब रहीआं सी ते पैसे गिणन दा वी समां नहीं बचिआ सीगा उहनां दे कोल। हुण तुसीं सोचिए होंगे कि फिल्मां दी गल कर ली है पर फिल्मां दसदीआं या नहीं। दसदीआं सब बारे दसूंगी पर पहलां सुन लो तुसीं गीत।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਡਿੱਬੇ ਬੋਤਲੋਂ ਸੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਮਾਏ। ਆਪਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਯੋਗ ਖਾਲੀ ਕੈਨ, ਬੋਤਲ ਔਰ ਕਾਰਟਨ ਪਰ 10 ਸੈਂਟ ਕਾ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਮ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਨ ਕੋਇਨ ਕੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਖਰਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਮੇ ਆਪਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸ ਮੇ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਆਪਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਹੀਂ ਏਕ ਕੰਟੇਨਰਸ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: हैं ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
0: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लिए नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

सारे जावा आह नाचे नाचे।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असी तुहाडे कोल आ रहे हैं।
1: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
2: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM
0: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन विच
2: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
2: तुम जीत गए।
3: हम जीत गए।

जीवन अमूल्य है। इस जीवन में हमें जो कुछ मिला है वो सब अमूल्य है, और वो सब हमें प्राप्त हुआ है उस ऊपर वाले की कृपा और उसकी रहमत से। उसी रहमत को धन्यवाद देने के लिए, उसका शुक्रिया कहने के लिए, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देने के लिए अपने जीवन आधार के सफर में आज हम और आप फिर से एक साथ आ गए हैं। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ सताक्षी आज एक बार फिर से। और जीवन एक ऐसा भंवर है जिसे पार करने के लिए एक बेस की, एक आधार की बहुत जरूरत है, और वो हमें मिलता है तब जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने ईश्वर को प्राप्त करना शुरू करते हैं और उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं, हम मनुष्यता को प्राप्त करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक सफर पे फिर से अपने जीवन के आधार को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, जीवन आधार में रेडियो प्रसवानी 1701 एम पर सताक्षी के साथ। और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए मेरे साथ।

जीवन आधार आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। धैर्य यानी कि पेशेंस सीखा कई बार है लेकिन समझ हम और आप नहीं पाते हैं, लेकिन धैर्य जो इंसान रखता है, जो इंसान पेशेंस रखता है, वही इंसान जीवन में तरक्की कर पाता है, वही इंसान जीवन में वो सब कुछ हासिल कर पाता है, पा पाता है जो वो पा सकता है, और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप भी अपने मन मुताबिक चीजें पाना चाहते हैं तो धैर्य रखिए। आज बेशक आपके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर धैर्य और मेहनत आप रखेंगे, यानी कर्म अपने अच्छे रखेंगे और पेशेंस रखेंगे, ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे, तो निश्चित तौर से आज ना सही लेकिन आप जीवन में वो सब हासिल कर पाएंगे जो असल में आप डिजर्व करते हैं और आप पाना चाहते हैं। आइए इसी बात पर एक और गीत को यहाँ पर सुनते हैं। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सुबह के कुछ अमूल्य विचार जीवन आधार में इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। और इन विचारों में आपके साथ सताक्षी भी अपने कुछ विचार घोल रही है और इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही है। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

अक्सर हम डर जाते हैं जब लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, अक्सर हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि अब कैसे ही हम इस जीवन में आगे बढ़ेंगे या हम कैसे कुछ भी जिंदगी में कर पाएंगे। तो देखिए, जिंदगी में घबराइए नहीं, डरिए नहीं, क्योंकि आपके साथ वो खड़ा है जो इस दुनिया में सबसे बड़ा है। याद है ना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हो गए थे और अपनी पूरी सेना को भी कौरवों को दे दिया था, उसके बाद भी जीत पांडवों की हुई। इसलिए जब आपके साथ वो ऊपर वाला खड़ा है तो फिर डर भय किस बात का है। आप जीवन में सही कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दीजिए। आइए इन्हीं विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन के आधार को, यानी कुछ ऐसी बातों को जो आपकी सुबह को भी खास बना रही हैं और सुबह में ऐसा रस घोल रही हैं जो मिठास का रस है, प्रभु भक्ति का रस है, ईश्वर की प्राप्ति का रस है और उस ऊपर वाले पर विश्वास का रस है। इसी रस के साथ, इसी भक्ति रस के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं कि उनकी हर बात पर आप रिएक्ट करें, श्रोताओं हर बात पर आप बोलें। अक्सर लोग आपको उकसाते भी बहुत हैं, बहुत परेशान करते हैं कि आप बोलें कोई बात हो और फिर लोगों के आगे तमाशा बने। लेकिन ऐसी जगह पर मौन धारण कर लेना, मौन हो जाना, शांत हो जाना, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। लोगों के तीखे शब्द, तीखे बाण आपको लगते जरूर हैं, लेकिन बस इतनी बात समझने की जरूरत है कि वो आपको इसलिए उकसा रहे हैं ताकि आप पलटकर वार करें, आप अपने शब्दों का वार करें और फिर वो मौन हो जाएं और आप चिल्लाते रहें और वो उसका मजा लें। इसलिए ईश्वर पर कहते हैं ना, कभी कभी चीजें छोड़ देनी चाहिए और मौन धारण करना ऐसे लोगों के लिए खासकर सबसे बड़ा सबक होता है। आइए इसी सबक के नाम ये अगला गीत सुनते हैं और सुनते रहिए जीवन आधार आपके

कटाक्षी के साथ जीवन को समझने की एक कोशिश आज एक नई सुबह हम और आप मिलकर कर रहे हैं, फिर से जीवन आधार के खास सफर में। इसी सफर में आगे बढ़ेंगे, अभी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए कटाक्षी के साथ।

लोहे प्रीति है लोहे लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। रेडियो प्रसानी 1701 एम पर जीवन आधार के सफर में श्रोतागण आप हैं सताक्षी के साथ। चुंबक को देखा है ना, मैग्नेट आयरन से उसकी अजब सी मोहब्बत है, ऐसे चिपकता है उससे कि लोहे को भी उठा लेता है। इसी तरह से हमारे शब्द भी हैं। कितना ही कठोर इंसान हो, कितना ही पत्थर दिल इंसान हो, अगर आप उससे मिठास से बोलते हैं, अगर आप उससे प्यार से बोलते हैं, तो आप उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हमारे शब्दों में वो ताकत है ना कि हम किसी को जान से मार भी सकते हैं और किसी को काल के ग्रास से छुड़ा भी सकते हैं, किसी को मरने से बचा भी सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा बोलिए, मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, ताकि लोग ऐसे जुड़ जाएं जैसे लोहा मैग्नेट से जुड़ जाता है, चुंबक से जुड़ जाता है। आइए इसी बात पर, कबीरदास जी की इसी बात पर आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार, आपके साथ है सताक्षी।

श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन के आधार का हमारा और आपका साथ जीवन आधार, जिसमें आप सताक्षी के साथ थे। एक ऐसे ही सफर पर कल फिर से आपके साथ चलूंगी, आपके साथ कुछ अनुभव अपने साझा करूंगी और कुछ मॉर्निंग थॉट्स ऐसे आपके लिए लेकर आऊंगी जो आपकी सुबह को और भी खूबसूरत बनाएंगे और ईश्वरीय शक्ति के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के सफर से अब लेते हैं इजाजत। नमस्कार।

वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार, अदाब, सत श्री अकाल और जय जोगिंदर जी। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और शो शुरू हो चुका है जाने का सफर। तो दोस्तों आज है फ्राइडे, यानी कि फ्राइडे की ये फ्रेश मॉर्निंग है। वीकेंड बस एक कदम दूर है, तो अगर आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, स्कूल रन पर है या फिर भाई कॉफी के साथ हमारा शो एंजॉय कर रहे हैं, तो अगले एक घंटे तक हम रहेंगे आपके साथ, तो आप इंजॉय जरूर कीजिएगा। और आज के शो में होंगी दोस्तों ब्रिस्बेन की लेटेस्ट अपडेट, ऑस्ट्रेलिया हेडलाइंस, बॉलीवुड और हॉलीवुड मसालेदार गॉसिप्स, एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, आज का मोटिवेशन और बेहतरीन म्यूजिक। तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि फ्राइडे मॉर्निंग को अमेजिंग बनाना सिर्फ ब्रिस्बेन ही जानता है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के साथ। ब्रिस्बेन में आज मौसम काफी प्लेजेंट रहने की उम्मीद है। सुबह ठंडी हवा और दिन में हल्की सी सनशाइन देखने को भी मिल सकती है। अगर आप आउटिंग या फिर ऑफिस जा रहे हैं तो सनग्लासेस और वाटर बॉटल साथ में जरूर रखिएगा। वहीं पे दोस्तों वीकेंड के करीब आते ही ना ब्रिस्बेन रोड्स पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना जो है बढ़ जाती है। अगर आप पीक आवर्स में ट्रैवल करने वाले हैं तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जरूर निकलेगा, क्योंकि भाई अगर ट्रैफिक में फंस गए फिर मुझे मत कहिएगा। तो आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

आइए जी इसी के साथ बढ़ते हैं अगली हेडलाइन की ओर। क्वींसलैंड में इस वीकेंड फैमिली इवेंट्स और कम्युनिटी फेस्टिवल्स का सिलसिला शुरू हो रहा है। अगर आप फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो लोकल इवेंट्स जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग सीजन की तैयारियां धीरे धीरे ना शुरू हो रही है और पार्क्स और गार्डन्स में एक्टिविटी भी बढ़ रही है। और याद रखिए दोस्तों हर सुबह सिर्फ खबरें ही नहीं एक नई उम्मीद भी लेकर आती है, तो अपनी उम्मीद को कायम रखे, उसको टूटने मत दे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, तो आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जाने का सफर। तो भाई, एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है, चलिए फिर जानते हैं। बॉलीवुड में कई बड़ी फिल्म्स की रिलीज डेट्स को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट जो है हाई लेवल में है। जी हाँ, इंटरनेशनल म्यूजिक लवर्स के लिए गुड न्यूज है। ऑस्ट्रेलिया में इस साल कई बड़े कॉन्सर्ट लाइनअप है और भाई ब्रिस्बेन भी उनमें से शामिल है। OTT प्लेटफॉर्म पर इस मंथ कई नई जो थ्रिलर और फैमिली एंटरटेनमेंट शोज है वो रिलीज होने वाले हैं। सो भाई ध्यान रखिएगा और तैयार रहिएगा। वहीं पे दोस्तों चलिए कुछ पूछती हूँ मैं, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज के फिटनेस वीडियो और ट्रेवल व्लॉग्स कौन कौन देख रहा है? भाई काफी ट्रेंड कर रहा है और यहाँ पर ना मतलब काफी देखा जा रहा है कि वे सेलिब्रिटीज जो है वो सोशल मीडिया में छाए हुए हैं अपने वीडियोस, अपने ट्रेवल व्लॉग्स और अपनी फिटनेस को लेकर। तो आप में से कौन कौन देख रहा है और कौन कौन भाई इसमें अपडेट है? जी हाँ, जरूर बताइएगा मैसेज करके। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

और अब वक्त है कुछ जरूरी खबरें जाने का जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें हैं, तो आइए सुनते हैं। ब्रिस्बेन के फेरी कम्यूटर्स के लिए भाई जरूरी अपडेट है। आज 8 बजे यानी मॉर्निंग के 8 बजे से लेकर मॉर्निंग के 10 बजे के बीच में इंडस्ट्रियल एक्शन की वजह से कुछ फेरी सर्विसेज जो है वो प्रभावित हो सकती है। अगर आप फेरी से ट्रैवल करने वाले हैं तो निकलने से पहले अपनी सर्विसेज जो है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। वहीं पे दोस्तों ब्रिस्बेन सीबीडी से एक पॉजिटिव खबर है। ऑफिस स्पेस की डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिटी का बिजनेस सेक्टर मजबूती से ग्रो कर रहा है और ऑफिस लीजिंग में तेजी देखने को भी मिल रही है। वहीं पे दोस्तों म्यूजिक लवर्स के लिए गुड न्यूज है। इंटरनेशनल R&B स्टार डैनियल कैसर ने भाई अपना ऑस्ट्रेलिया टूर का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया है और ब्रिस्बेन भी इस टूर का हिस्सा है और ये मैंने कल भी आपको बताई थी बात। तो आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। इस गीत के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो आप सभी ने सुना ये गीत एंड आई होप आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो AFL फैंस के लिए अपडेट है भाई। फाइनल से पहले कई टीम्स इंजरी कंसर्न का सामना कर रही है अब, जिससे कि इस वीकेंड के मैचेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो फिलहाल दोस्तों इतनी ही थी ब्रेकिंग अपडेट्स। अगर दिन भर कोई भी बड़ी खबर आती है ना, तो सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी। तो आइए फिलहाल सुनते हैं, एंजॉय करते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो दोस्तों वैसे ना फ्राइडे का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं होता, फ्राइडे का मतलब है स्माइल के साथ वीकेंड को भाई वेलकम करना। हाँ जी, तो और अब वक्त है भाई आज के शो को रैप अप करने का। हर नया दिन दोस्तों एक नया चांस लेकर आता है, अगर इस हफ्ते कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ ना तो टेंशन मत लीजिए, वीकेंड रिचार्ज होने का परफेक्ट मौका है। इसीलिए मतलब होप को मत टूटने दीजिए, बस अपने आप को रिचार्ज कीजिए, प्लान बनाइए कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों जहाँ भी रहिए अपने और अपनों का ख्याल जरूर रखिए, थोड़ी सी काइंडनेस किसी का ना पूरा दिन खूबसूरत बना सकती है।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चांद से टकराया फाल्कन 9। बुधवार को स्पेस एक्स का रॉकेट फाल्कन 9 चंद्रमा से टकरा गया। इस दौरान चंद्रमा की सतह पर भयानक विस्फोट हुआ। इस भीषण तबाही का नजारा चिली के एक टेलीस्कोप में रिकॉर्ड हो गया। ये रॉकेट 8,690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह से जा टकराया। लोगों पर जुल्म, मीडिया पर पाबंदी। पीओके में सख्ती के बाद दुनिया भर में हुई पाकिस्तान की बदनामी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की बढ़ती सख्ती ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। कश्मीरी समुदाय के लोगों, मानवाधिकार समूहों और वैश्विक निगरानी संस्थाओं ने पत्रकारों पर पाबंदियों और मीडिया की आजादी को लेकर चिंता जताई है। गैर कानूनी रूप से कब्जे वाली इस घाटी में तथाकथित विधानसभा चुनावों के दौरान शहबाज शरीफ सरकार द्वारा लागू किए गए इन कदमों की प्रेस की आजादी के लिए काम करने वाले संगठनों ने भी आलोचना की। तारिक रहमान के करीबी ने शेख हसीना को दी चुनौती। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद पहली वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी, जेल या जान के खतरे के बावजूद वो दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी। शेख हसीना के इस बयान के एक दिन बाद ही पीएम तारिक रहमान के कैंप से उन्हें चुनौती मिल गई है। रहमान के सलाहकार सैयद मोजम्म हुसैन अलाल ने कहा कि अगर हसीनों को बांग्लादेश के सिस्टम पर भरोसा है तो फिर इंतजार क्यों करना है। अलाल ने कहा कि दिसंबर तक क्यों, अभी तो सिर्फ अगस्त है, उन्हें अभी आना चाहिए। आइए जुड़ते हैं भारत के साथ और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत में नहीं चलेगा अमेरिका का कानून, एल्गोरिथम और नियमों पर केंद्र की मेटा को दो टूक। ये मोदी का वीडियो हटाने को लेकर मेटा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मेटा की ग्लोबल टीम ने भारतीय कानूनों के पालन को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत की। मेटा की ग्लोबल टीम के 3-4 दिन और भारत में रहने की उम्मीद है। इस दौरान सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी और बैठकें होंगी। इन बैठकों में व्हाट्सएप से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सरकार मेटा के एल्गोरिथम, कंटेंट मॉडरेशन, नियमों के पालन के तरीकों, चेक एंड बैलेंस और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी मांग रही है। इसमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिस्टम भी शामिल। ब्रिटेन से भारत आएगी वाग देवी की प्रतिमा, भारत ने तेज किए राजनयिक प्रयास। धार के ऐतिहासिक भोजशाला से एक सदी पहले ब्रिटेन ले जाई गई 11वीं शताब्दी की देवी वाग देवी के सफेद संगमरमर की प्रतिमा को वापस लाने के लिए भारत ने राजनयिक प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद लंदन संग्रहालय के साथ लगातार संपर्क में है, जिससे 2014 के बाद से 650 से अधिक प्राचीन कलाकृतियों को सफलतापूर्वक स्वदेश लाने वाले भारत के रिकॉर्ड में एक और बड़ा अध्याय जुड़ने की उम्मीद है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

बाकी से जो पर सो कर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

0: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
1: आएगा

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तू भी ना आती।

सर तुम्हें।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

है रेडियो 71 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत से रंग बिखेरे।
2: और अभी से लेकर 10 बजे तक रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर आपके साथ फिरोज खान। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबके लिए शुभ हो। और आज जुमा है और आप सब सुनने वालों को जुमा मुबारक। आप सबको हमारा प्यार भरा अस्सलाम अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहु। और शुरुआत कर रहे हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट आज जुमा है।
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

वो जालिम बंदा ए मलूम, अब तक याद तो होगा किसी के पास क्या होगी, जो उसके पास थी दौलत मगर जब मर गया तो छोड़कर सब हो गया रुखसत। तुझे शद्दात का अंजाम अब तक याद तो होगा, बनाई खुल्द तो एक पांव अंदर एक बाहर था।

दिल में डूबा तजा ने हर सितमगर और हर मरदूत को मारा, बनाई शक्ल एक मच्छर की और नमरूद को मारा। संभलना है तो रखना याद मेरी इस नसीहत को, न जीते जी कभी तू भूलना रोजे कयामत को। फना होना है तुझको और फना हो जाएगा एक दिन, ये दुनिया छोड़कर तू कब्र में सो जाएगा एक दिन आखिर।

रहा है पी के जामे ऐसो इशरत को, भूला बैठा खुदा को, पूजता है मालो दौलत को। खुदा को ये तेरा नाज़ो गुरूर अच्छा नहीं लगता, के दिल काला होता।

0: है।
1: अगर तू अक्ल रखता है, अगर तू ज्ञान रखता है, तो है ताबिश तू क्यों मरती हुई दुनिया पे मरता है।

ईमान का टिकट ले, गाड़ी में बैठ जल्दी, तू कलमा पढ़ते पढ़ते बोगी है दीने हक की, इसमें तमीज कैसी, जैसा अमल हो तेरा पाएगा सीट वैसी, मांगे टिकट जो चेकर, कहना ये मुस्कुरा।

जरा था किस कदर ख्याल नवासों का बरमला। असहाबे मोहम्मद ने मोहम्मद से ये पूछा कि उल्फत ज्यादा रखते हो किस नूरे ऐन से। फरमाया मुस्तफा ने हसन और हसन।

और इन यादों को ताजा करने के लिए मैं आपका साथ देता हूं हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक स्टेशन रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर। आपके साथी फिरोज खान संगीत की जानकार हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक 79 ब्रिस्बेन पर। हर जुमे के दिन शुक्रवार को हम आपके लिए पेश करते हैं हमारा विशेष प्रोग्राम। आज जुमा है, 9 से लेकर 9:30 बजे तक आप सुनते हैं मरहूम बशीर अहमद दीवान से जुमा बयान, और उसके बाद हम करीबन 9:30 से लेकर 10 बजे तक आपकी खिदमत में पेश करते हैं चुने हुए मजहबी कवालियाँ, ऑल विंटेज कवालियाँ। अगले एक बार तक के लिए आपके साथ फिरोज खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।